0: इसको आपने सुना है, वो खुद सुना है। बरहान भाई का यह सवाल है कि बाज लोगों के नजदीक जादू एक इल्म जिसे सीखना चाहिए, भाई ये कह रहे कि जावेद गांधी साहब ने यह बात की है। याद रखें, जादू या मुतअल्लिक अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान मजीद में। अगर ये लोग वाकई कुरान मजीद को हक समझते हैं और ये कहते कि हम कुरानी हैं, और तो उनको समझना चाहिए कि जादूगर जादू के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान में वाज़ह अल्फाज में फरमाया है, वमा कफर सुलेमान वलकिन शयातीन कफर युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। इससे वाज़ह अल्फाज कोई नहीं होंगे कि कुफर सुलेमान अलैहि सलाम ने नहीं किया, कुफर किए जादूगरों ने, शैतानों ने। क्यों क्यों कुफर किया है? वजह युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, लोगों को जादू की तालीम देते थे। तो जादू को तालीम देने वाला काफिर है मेरे भाई, ये अल्लाह ताला का फरमान है, ये मेरा कौल नहीं है। ये कैसे कोई मुसलमान सोच सकता है कि जादू का इल्म हासिल करना चाहिए? सुभान अल्लाह। हम यह तो नहीं कहते कि कौन काफिर कौन मुस्लिम है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि ऐसी बात करना, याद रखें, ये कम इल्म जहालत की इंतहा है। मेरा नहीं ख्याल कोई इल्म वाला इंसान ऐसी बात करेगा, खासतौर पर वो लोग जो यह दावा करते हैं हम कुरान मजीद पर अमल करते हैं। क्योंकि मैं यह जानता हूं कि ये लोग जो हैं ये मुकरीन हदीस है, हदीस का इंकार करते हैं और हमेशा कुरान ही की बात करते हैं। तो भाई कुरान की बात क्यों नहीं मानते हो? तो यह वाजह दलील है कि बात कुरान मानने हदीस मानने न मानने की नहीं है, बात यह है कि सिर्फ अपनी बात को ही मानना है, चाहे अल्लाह ताला का फरमा कुरान मजीद में हो उसको भी मोड़ तोड़ के अपनी अकल के मुताबिक उसको बयान करना है, उसमें तहरीफ और तवील पेश करके। अब इस वाज़े आयत में जो वो तफसील बयान करना चाहे, जो वो तहरीफ करना चाहे, उनकी मर्जी है, लेकिन अल्फाज वाज़े हैं। वमा कफर सुलेमान वलकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, वाज़े अल्फाज हैं। यह बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और गलत बात है। कहने वाला कोई भी हो, वैसे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जादू का इल्म हासिल करने वाला, जादू करने वाला इंसान कुफर का इर्तिकाब करता है। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد ارشاد باري تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی علامات. حب رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایمان ہے، توحید ہے، دین ہے، لیکن یہ محبت ہے کیا؟ آج ہم نے بھی محبت کیسے کی جاتی ہے، آج ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ محبت کی، سچی محبت کی علامات کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار بہت ہیں. ہر مسلمان یہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ وہ محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا واقعی اس کا دعویٰ سچا ہے؟ آخر وہ کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ بتا سکتے یا پہچان سکتے ہیں کہ کون مسلمان اپنے اس دور